0: तो रहत है करतार जिस परमेश्वर दे हथां विच साडे स्वासां दी रोजी दी रिजक दी तार है। ऐसे अकाल पुरख वाहिगुरु नू सिमरना करदा है।
1: आठों जाम जाप जिन तारा
0: कवि जी भाई हिंदाल दी साखी सुना रहे ने के अठे पैर ही ओस

0: गुरु प्यारी गुरु श्री गुरु साध संगत जी इतनी आजी प्रवान कर आप संतां तंता दे जो होवण भागे हो जो सतसुरां जी दी पावन गोद दा निघ मान गया रात्रि दे दीवाना विच सज बैठे हो आत्मरस कीर्तन का पहला दिन सी। हर रोज शाम सत तो लैके नौ बजे तक इस तरह दीवान सजिया करेंगे। आप संतां दे चरणां विच निमर बेनती है कि आप संतां ने वध चढ़ के गुरु की बाणी का गुरु की कीर्ति का लाहा लाना क्योंकि सतसंगत दीआं घड़ियां सतसंगत जी बड़े वड्डे भाग होण ते सतसंगत दीआं घड़ियां नसीब हुंदीआं जिहदे भाग चंगे ना होण उह ते भावें गुरु घर बिलकुल घर दे सामणे होवे तां वी उठ के नहीं जांदे। सतगुरु जी दा उपदेश है सरवर हंस तुरे ही मेला खसमै एवै भाणा सरवर अंदर ही
1: 1550 KRPI रेडियो ते तुसी सुन रहे सी लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।
2: यू आर लिसनिंग टू KRPI 1550 रेडियो फर्नडेल वाशिंगटन।
3: संतपना की है, पैगंबर किसनु कहंदे ने, अवतार किसनु कहंदे ने, पूरन संत किसनु कहंदे ने, फकीरी चीस्त सिर्फ दो शब्दां विच दो बोलां विच इतना वड्डा सवाल। फकीरी चीज फकीरी क्या है, संतपना की है। गुरु नानक देव जी महाराज जवाब देंदे ने इब्तदाए फकीरी फना अस्त इंतहाए फकीरी बकास्त। किसी उच्चे आदर्श लई अपने आप नूं निछावर कर देना कुर्बान कर देना मिटा देना और हमेशा लई अमर तत् दी प्राप्ति कर लेना बस इसे नूं फकीरी कहिंदे। यही संतपण है। इस सवाल जवाब में फिर थोड़े सामने रखा जन्म साखी च ने फकीरी चीस्त। फकीरी की है, फकीर किसनु कहंदे ने, संत किसनु कहंदे ने। उस दिन भी मैं अर्ज की थी सी संत दिखाई देना एक श्रृंगार है, संत हो जाना एक तपस्या है, मेहनत है, कठोर मेहनत है। संत दिखाई दे जाना ते संत नहीं है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते मुर्दा शिंगारे आया और कुछ भी नहीं है। नाम बिना जेता व्यवहार जो मेरे तक मिथिया शिंगार। ए मुर्दे नु शिंगारे आ गए। धार्मिक लिबास ते है धार्मिक जीवन नहीं है, धार्मिक जिंदगी नहीं है, सिर्फ लिबास ही लिबास। फकीरी चीस्त फकीरी किसनु कहंदे ने। इब्तिदाए फकीरी फनास्त इंतहाए फकीरी बकास्त। किसे उच्चे आदर्श लई अपने आप नु कुर्बान कर देना मिटा देना और हमेशा लई अमर तत् दी प्राप्ति कर लेनी बस इस नु फकीरी कहंदे ने। गुरु नानक दे पंजवें स्वरूप धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपने जीवन दे राही अर्थ सामने रख दिते। कहिंदे ने मनुख नूं तीन घटनावां तो गुजरना पैंदा जन्म जीवन मरण। जन्म होया होवेगा जी रहा होवेगा मर गया होवेगा। इन्हां तीन अवस्थावां तो हर एक नूं लंघना पैंदा जन्म जीवन मरण। दुनिया दे कुछ ऐसे पुरुष ने इतिहासकारां ने उन्हां दे जीवन दी कथा नु लिखे है। जन्म किथे होया सी, मां बाप कौन सन, ए भी नहीं पता। बहुत सारे भगतां दा जीवन, बहुत सारे क्रांतिकारियां दा जीवन लिखण वाले ने इतिहासकारां नु पता भी नहीं चल सके उन्हां दे मां बाप कौन सन, जन्म किथे होया सी, कदों होया सी। जन्म दी कोई छाप नहीं है, इतिहास दे जीवन दी छाप है। जो कुछ वो करदे रहे उस नाल जगत नु कुछ मिलिया। तो इतिहासकारां ने जीवन दी फिक्र की थी, जन्म दी नहीं। फिर कुछ ऐसे ने जिन्हा दा मरना बड़ा महान सी, उन्हां दी मौत कुछ दे गई, उन्हां दी मौत दे नाल कुछ क्रांति हुई, उन्हां दा मरना जगत दी झोली दे कुछ पा गया। तो इतिहासकारां ने उन्हां दी मौत बारे बड़ा लिखा है। जैसे मैं देखदा शहीद भगत सिंह दी समाध ते हर साल मेला लगदा है फिरोजपुर दे च। करीबन करीबन 1.5-2 लाख बंदे कठे हुंदे ने। पंजाब दी सारी मिनिस्ट्री ते पहुंचदी है, सेंट्रल तो भी पहुंचदे ने मिनिस्टर, फुल भेंट करन वास्ते, फुल माला चढ़ाण वास्ते। दरअसल उस पुरुष दा मरना इतना महान सी, कुछ दे गया, उसकी मौत कुछ दे गई, उसकी मौत जगत वासियां दी झोली च कुछ पा गई। तो इतिहासकारां ने उसकी मौत नु लिया है, बरसी मनांदे ने, उस दिन दुनिया कठी हुंदी है। इतिहास दी कोई लंबा चौड़ा यह जिक्र नहीं कदो जमया, कौन मां बाप सन, किस शहर दे जमया, कोई जन्म कथा नहीं है, मरण कथा है। तो किसे दा मरना इतना महान आंदा है कि कलम दे धनिया नो, दिमाग दे धनिया नो, उना दे ते कुछ लिखना पैंदा, मेहनत करनी पैंदी। कईयां दा मरना ते आम साधारण आंदा है, चलो जी कोई ताप बुखार एक्सीडेंट होया, चले गया, शरीर गया। लेकिन जीवन महान होंदा, उना दी जिंदगी कुछ दे जांदी है। तो फिर कलम दे धनी उना दे जीवन बारे लिखते। संसार दे इतिहास दे च हजारां साल उड़ीक करण तो बाद कदी कदाई कोई ऐसी आत्मा भी जन्म लेंदी है जिदा जन्म भी क्रांति करदा है, जिदा जन्म भी अपनी छाप लांदा है। भट्ट गुरु अर्जन देव जी महाराज बारे कहंदे ने, जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणिया। कोई जीवन दे साधना करके ब्रह्म ज्ञानी होया होवेगा, तुसी जन्म तो ब्रह्म ज्ञानी हो। कोई बड़ी साधना कर करके संत बनिया होवेगा, तुसी जन्म तो संत हो। कोई मेहनत कर करके रब नाल जुड़िया होवेगा, तुसी जन्म तो ही जुड़े हो, तुसी जन्म तो महान हो। और इसका इतिहासिक सबूत मिलता है, 2-2.5 साल की उम्र ते कुछ नहीं आती, महाराज गुरु अर्जन देव जी, बालक गुरु अर्जन देव जी, धन गुरु अमरदास जी महाराज दे सिंघासन ते चढ़न की कोशिश पे करते सन। बजे होया है माता भाने जी, और डांट दे लहजे देच आख्या है, सतगुरां दा सिंघासन है, ये गुरु नानक दी गद्दी है, इसते तीजे गुरु नानक विराजमान होंदे ने, तुसी आइंदा चढ़न दी कोशिश ना करना। माता भाने जी आ गए। इस तरह बालक गुरु अर्जन देव जी नूं डांटदे होया, अपने बच्चे नूं डांटदे होया ऐसा आख्या, ਜਦੋਂ ਚੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁਸਕੁਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਆ ਗਏ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ। ਇਕਦਮ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਦੇ ਚ ਆਖਿਆ, ਦੋਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬਹੁਤਾ।

मौत ने भी बड़ा भारी जो है क्रांतिकारी नजारा पेश किया। हुण मैं अर्ज करा बार दी जेड़ी ताकत है शक्ति है इनू सता कहिंदे ने। सता इस सता कई तरह दी हुंदी है, इतान कई तरह दा हुंदा है। और इतनी गल स्पष्ट है जिदे कोल तान नहीं ओदे कोल माण भी नहीं हुंदा। निताणा निमाणा हुंदा है, बगौर मुताला करना। निताणा मनुख निमाणा हुंदा है, निताणी कौम निमाणी आउंदी है, निताणा देश निमाणा हुंदा है। तान दे आले दुआले माण परिक्रमा करदा है, जिथे तान होवेगा माण होवेगा, लाजमी होवेगा। तान माण दोवे कठे रहिंदे ने। अगर किसी का कोई मान सन्मान है तो कोई तान होवेगा, बिना तान तो मान नहीं आता। मैं एक दफा फिर दोहरा दिया, निताणा निमाणा आता है, निताणी कौम निमाणी आती है, निताणा देश निमाणा आता है। कुछ इतिहासकार तो इस तरह कहते ने कमजोर मुर्दा आता है, मुर्दा होंदा है, चलदी फिरदी लाश होंदा है और कुछ भी नहीं है। कमजोर दा जीवन कोई जीवन नहीं है। हुण मैं अर्ज करा विद्वाना ने खास करके चाणक ऋषि ने, शायद आप नूं पता होवे भारत विच तीन संत ऐसे भी होए ने जिन्हां ने राजनीति ते ग्रंथ लिखे ने। राजा बिक्रमाजीत दे समय ते जो राजा बिक्रमाजीत दा गुरु से चाणक, उन्हें राजनीति ते ग्रंथ लिखे है, उन्हें चाणक नीति दर्पण कहिंदे ने। भारत विच हर रेलवे बुक स्टॉल ते मिलदा है, बहुत पढ़िया जांदा है अजकल। दूसरा होया है धरतराष्ट्र दा सलाहकार, दुर्योधन दा पिता धरतराष्ट्र राजा से सलाहकार से उसका बिदर, इदा भी ग्रंथ मिलता। इनू बिदर नीति दर्पण कहते हैं, अजकल ए भी काफी पढ़िया जाता है। तीसरा राजनीति दे उते ग्रंथ लिखे है भरतरी ने। ये राजे बिक्रमाजीत दा छोटा बिरा से, भारत दे जिहड़ा सम्मत चलदा है उन्हों बिक्रमी सम्मत कहिंदे ने, राजे बिक्रमाजीत नाल जुड़िया है। गुरु ग्रंथ साहिब दे च वी जिहड़े हवाले मिलदे ने उह बिक्रमी सम्मत दे ने। आन 78 जान 97 होर भी उठसी मर्द का चेला, ये बिक्रमी सम्मत है, ईसवी सम्मत नहीं है, लंघ है। ते जिहड़ा 12वां धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे च है ना, बिक्रमी सम्मत चेतर तो शुरू होंदा है, चेत तो ये 12वां भी बिक्रमी सम्मत नाल संबंधित है, ईसवी नाल नहीं। ईसवी सम्मत ते जनवरी तो शुरू होंदा है ना, बिक्रमी सम्मत चेत तो शुरू होंदा है, उदों अंदाजन मार्च दा महीना होंदा है। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे 2 12वां ने गुरु नानक देव जी महाराज दा तुखारी राग दे च, गुरु अर्जन देव जी महाराज दा माज राग दे च, दोवें बिक्रमी समत दे मुताबिक चेत तो आरंभ होंदे ने। चेत गोविंद आराधिये होवे आनंद खणा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भी अपनी लिखतां दे च बिक्रमी समत नूं वरत्या है। सम्मत 17 सहस बड़िजे अर्ध सैन फुट 3 कहिजे, भादरो सुदी अष्टमी रववारा, ये सारा जड़ी गिनती है बिक्रमी सम्मत दी। चाणक बिदर ते भरतरी ने राजनीति ते ग्रंथ लिखे ने। इन्हां तिन्ना महापुरुषां ने दस्या है माण उत्थे ही परिक्रमा करदा जिथे तान होवे,
ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਨੇ।

प्रारंभता तो पहला गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो और आशीष बख्श दे हुए उच्चारण करो जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। कल सतगुरु कृपा नाल विचार कीती सी हों आया दूरों चल के मैं तकी तौ शरणाए जियो मैं आशा रखी चित में मेरा सबो दुख गवाए जियो। जग्यासु जिस दे अंदर दी ए तीबर तांग है कि मन टिक जाए सतगुरु सज्जन मिल जाए करोड़ा जन्मां दी जेड़ी ए फेरी है इस फेरी तो मुक्त हो सका ते अखीर कर को बेनती कर रहसन कि मैं बहुत दूर तो चल के आया अनेका शरीरक चोले बदल दिया जूना विच घूम दिया फिर दिया ए मानव देही प्राप्त होई है ते एक आस तेरे ते रख के आया वा कि मेरे दुख नो आप जी जरूर दूर करोगे। ए भी खुश किस्मती है कि मनुखा देही दे विच ए एहसास हो जाए कि मेरी जिंदगी दी मंजिल की है मेरे जीवन दा मनोरथ की है। हजूर ने अमृत बाणी विच बख्शिश की थी है कि इस जिंदगी दा मकसद ए वे कि गुरु दी सेवा ते परिपूर्ण परमात्मा दा सिमरन गुर सेवा ते भगत कमाई तब ए मानस देखी पाई। भाई साहिब भाई नंद लाल जी दा गजलां विच जो पहला शेर है ओ है ही मनुखा शरीर दे नाल संबंधित। भाई साहिब कहिंदे ने हवाए बंदगी अवुरद दर वजूद मरा हवाए दा अर्थ है तांग बंदगी दा अर्थ सिमरन हे मालक तेरी बंदगी दी तांग ही मेनू इस जिसम विच इस चोले विच लेके आई हवाए बंदगी अवुरद दर वजूद मरा ता मैं ए वजूद हासिल कीता ता शरीर धारण कीता तेरी बंदगी कर सका वगर ने जोके जोके दा अर्थ शौक बाकी मेनू कोई शौक नहीं इस तन विच रहन दा सिर्फ एक शौक के देगी मिली मैं तेरी बंदगी कर सका हवाए बंदगी अवुरद दर वजूद मरा वगर ने जोके चुनी आमदन नाबूद मरा। और कोई मकसद नहीं। हजूर ने इथे फिर जदो जग्यासु दे प्रश्न सवाल संपन्न हुए ते अगो उत्तर शुरू कीता है ओ उत्तर उत्तर जो दिता गया गुर सिख वल्लों ओ पहला उत्तर पहला यही सी के अपने आप नू समर्पित कर दे अपनी खौमे नू छड़ दे जे गुरु सज्जन नू मिलने परमार्थ दे पंध ते चलने परमार्थ दी पगडंडी ते तुरने ते सब तो पहली गल ए धारण कर इत मार्ग चले भाई अड़े ओ भरावा मेरे वीरा जे इस मार्ग ते एक रस्ते ते चलना चाहने ते पहला काम ए कर गुर कहे सो कार कमाए जियो। कार दा अर्थ है कम जो गुरु कहन जो सतगुरु अपनी रसना तो कहन बिना तर्क दे बिना खुजत दे बिना किसे कटाक्ष दे तू सत बचन करके मान ले पहला तेरे लिए उत्तर ए पहला सबक ए वे के जिस नू मथा टेक दिता है उस गुरु दे कीते ते तर्क ना कर जो कहिंदा उनू सत बचन करके मनी आओ ए बचन है के गुर कहे सो कार कमाए जी क्योंकि गुरमत दे अंदर सतगुरु दे कार अंदर

चवर शतर तखत मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर अमृत वेले तो लैके सतगुरां जी दे इस गुरमत दीवान दी हाजरी भर रहे गुरु सवारे सत संगी जनो सतगुरु जी दे इस दरबार की मर्यादा अनुसार अमृत गुरबाणी दे जाप गुरबाणी कीर्तन और गुरु सवारियां ने आए हुए हजूर दे पवित्र हुक्म दी निचार आप जी दे नाल सांझी कीती है। अरदास और हजूर दा हुक्म आपां सरबत कीता है, आओ निर्धारित समय अंदर रह के आप जी नाल सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी का पावन पवित्र जीवन बचपन उन्हां दे काल दा समा गुरगद्दी ते विराजमान अमृत बाणी दे उच्चारण करता पावन पवित्र जीवन विचों कुछ विचार आप नाल सांझे कर सका। करो कृपा साध संगत विचार दी प्रारंभता तो पहला गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो और उच्चारण करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिस दिन दा दास इंग्लैंड दी धरती ते सतगुरु दे शब्द दे प्रचार प्रसार हित आया उस दिन तो ही आपां सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह हजूर दे पवित्र जीवन और बाणी दी विचार प्रारंभ कीते। अज इस फेरी दी सतगुरु जी दे इस दरबार विच संपन्नता है ते मंच यही ख्याल सी कि सतगुरु गुरु रामदास जी दे चरणा विच जो रोज असी अरदास करने हैं उस सवैये दी विचार ही आप नाल सांझी कीती जाए। अमृत बोल हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिख खाई माया मोह भरम पै भूले

0: संत पेटिया नानक मन परगास अष्टपदी
1: संत संग अंतर प्रभु डीठा
0: ना प्रभु का लागा मीठा
1: सकल समिग्री एक घट माहे
0: अनक रंग नाना दृष्टा है
1: नौ नदी अमृत प्रभु का नाम
0: यही मैं इसका विश्राम
1: सुन समाद अनहद तहनाद
0: कह न जाइए चरित विस्माद
1: दिन देखा जिस आप दिखाए
0: नानक तिस दिन सो जी पाए
1: सो अंतर सो बाहर अनंत
0: घट घट व्याप रहा भगवंत
1: धर्म माहे आकाश पयाल
0: सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल
1: अन दिन पर्वत है पार ब्रह्म
0: जैसी आज्ञा तैसा कर्म
1: संतर माहे
0: चार कुंट दिशा समाहे
1: इसके भिन्न नहीं को ठाओ
0: गुर प्रसाद नानक सुख पाओ
1: वेद पुराण सिमरत मैं देख
0: सस्य सूर न खतरे मैं एक
1: वाणी प्राप्ति सबको बोले
0: आप डोल न कब हूँ डोले
1: सर्व कला कर खेल है खेल
0: मोल न पाइये गुण है मोल
1: सर्व ज्योत मैं जाकी ज्योत
0: धार रहे स्वामी ओत पोत
1: गुर प्रसाद परम का नास
0: नानक तन में एको विश्वास
1: संत जना का पेखन सब ब्राह्म
0: संत जना के हृदय सब धर्म
1: संत जना सुने शुभ वचन
0: सर्व व्यापी राम संग रचन
1: जिन जाता तिसकी यह रह
0: सत वचन साधु सब कहत
1: जो जो हो सोई सुख मान
0: कर्ण करावन हार प्रभ जान
1: अंतर बसे बाहर पियो ही
0: नानक दर्शन देख सब मोही
1: आप सत किया सब सत
0: जिस प्राप्त सगली उत्पात
1: जिस भावे ता करे विसार
0: जिस भावे ता एकंकार
1: अनक कला लखी नह जाए
0: जिस भावे तिस लय मिलाए
1: कवन निकट कवन कहिया दूर
0: आपे आप आप भरपूर
1: अंतर्गत जिस आप जनाए
0: नानक तिस जन आप बुझाए
1: सर्व भूत आप वर्तारा
0: सर्व नैन आपे खनहारा
1: सगल समग्री जा का तना
0: अपन जस आप ही सना
1: आवन जाने खेल बनाया
0: आज्ञाकारी कीनी माया
1: सब कह मत अलिप्त हो रहे
0: जो किश कहना सो आपे कहे
1: आज्ञा आवे आज्ञा जाए
0: नानक जा पावे ता लय समाए
1: इससे होए सुना ही बुरा
0: उरे कहो किने कश करा
1: आप भला करतूत अतनीति
0: आपे जाने अपने जी की
1: आप साज धारी सब साच
0: ओत पोते अपन संग राज
1: ताकि गर्मित कही न जाए
0: दूसर होए ता सो जी पाए
1: इसका किया सब प्रवान
0: गुर प्रसाद नानक हो जान
1: जो जाने ते सदा सुख होए
0: आप मलाए लय प्रभ सोए
1: ओ धनवंत कुलवंत पतवंत
0: जीवन मुक्त जस हृदय भगवंत
1: धन धन धन जन आया
0: जिस प्रसाद सब जगत कराया
1: जाने अमन का यह सुहाओ
0: जन के संग चित आवे नाम
1: आप मुक्त मुक्त करे संसार
0: नाम।

0: राष्ट्रपति
1: पूरे गुरु का सुन उपदेश
0: वाह ब्रह्म निकट कर पेख
1: सा सा सिमर हो गोबिंद
0: मन अंतर की उतरे चिंद
1: आस्त नित त्याग हो तरंग
0: संत जना के तुहर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करो
0: साथ संग अग्न सागर तरह
1: हर धन के भर ले हो भंडार
0: नानक गुरपुरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद
0: साथ संग पर परमानंद
1: नरक निवार उधारो जियो
0: गुण गोबिंद अमृत रस पियो
1: चित चित्त हो नारायण एक
0: एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दमोदर दीन दयाल
0: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
1: सिमर सिमर नाम बारंबार
0: नानक जी का यह आधार
1: उत्तम श्लोक साध के वचन
0: अमलीक लाल यह रतन
1: संत कमाप्त हो उदार
0: आप त्रैलोक का निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग
0: जाके मन लागा हर रंग
1: जय जय शब्द अनाहत बाजय
0: सुन सुन अमृत करे प्रभु गाजय
1: रखे गोपाल महांत कह माथे
0: नानक उदरे तिन कह साथे
1: शरण जोग सुन सरनी आए
0: कर कृपा प्रभु आप मलाए
1: मिट गए वैर भय सब रीन
0: अमृत नाम साध संग लैन
1: सुप्रसन्न भय गुरुदेव
0: पूर्ण होई सेवक की सेवा
1: आज जाल विकार के रहते
0: राम नाम सुन रसना कहते
1: कर प्रसाद दया प्रभु धारी
0: नानक नेहि खेप हमारी
1: प्राप्ति उस्तत करहो संत मीत
0: सावधान एकाग्र चीत
1: सुखमनि सहज गोबिंद गुण नाम
0: जिस मन बसे सहोत निधान
1: सब इच्छा ताकी पूर्ण होए
0: वरदान पुरख प्रगट सब लोए
1: सब दे ऊच पाए स्थान
0: लहर न होवे आवन जान
1: हर तन खाट चले जन सोए
0: नानक जिसे प्राप्त होए
1: खेम शांत रिद नव निध
0: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
1: विद्या तप जोग प्रभु ध्यान
0: ज्ञान श्रेष्ठी उत्तम स्नान
1: चार पदार्थ कमल प्रकाश
0: सबके मत सगल ते उदास
1: सुंदर चतुर तत् का बेता
0: समदर्शी एक दृष्टिता
1: ये फल तिस जन कै मुख भने
0: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
1: केहो निधान जपै मन कोए
0: सब जुग मैता की गत होए
1: गुण गोबिंद नाम धुन बाणी
0: समर्थ शास्त्र वेद बखाणी
1: सगल मतांत केवल हर नाम
0: गोबिंद भगत कै मन विश्राम
1: कोट अपराध साध संग मिटै
0: संत कृपा ते जमते छुटै
1: जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए
0: साध शरण नानक ते आए
1: जिस मन बसै सुनै लाई प्रीत
0: जन आवे हर प्रभ चीत
1: जन्म मरणता का दुख निवार
0: दुर्लभ दे तत्काल उधार
1: निर्मल शोभा अमृतता की बानी
0: एक नाम मन माहे समानी
1: दुख रोग बिन से भय भरम
0: साध नाम निर्मलता के कर्म
1: सबते ऊचता की शोभा बनी
0: नानक एह गुण नाम।

0: کنگڈم۔ جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو یا ڈیموکریسی دا تماشا ہوئے یا جمہوریت دا تماشا ہوئے یا شخصی حکومت دا کرشمہ ہوئے، شکتی ہوئے، مان مریادا ہوئے، جلال ہوئے۔ جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ صرف دھرم نو کڑ دیو، کہندے چاہے شخصی حکومت ہوئے، کنگڈم ہوئے، تے چاہے ڈیموکریسی ہوئے، صرف دھرم نو کڑ دو تو حکومت کر رہا ہے چنگیز خان، ہلاکو ہٹلر، موسولینی۔ پھر ہٹلر کی کرے گا؟ 2.5 کروڑ بندیاں نو قتل کرے گا۔ بندیاں نو سکھ دین واسطے 2.5 کروڑ بندیاں نو قتل کرنا ہے۔ کرانتی لیان واسطے 3 کروڑ بندیاں نو مارنا ہے۔ ماؤسو تنگ نے 3 کروڑ بندیاں نو مار کے تے 3 کروڑ نو اجاڑ کے کرانتی لیاندی سی چائنا۔ جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ دھارمک منک دے بند بند کیوں کٹ دیتے گئے؟ ایک کوندا ہے، کروڑاں دی بھیڑ ادھارمک لوگاں دی۔ دھارمک منک سولی تے کیوں چڑھیا؟ بڑی بھاری بھیڑ دیکھن والی سی، بھیڑ دیکھ رہی ہے، سولی تے چڑھایا جا رہا ہے۔ بھیڑ ادھارمک لوکاں دی، ایک دھارمک منک نو سولی دتی جا رہی، بھیڑ پاپیاں دی، ایک دھارمک منک دا چاندنی چونک دے گلا کٹیا جا رہا ہے، شہید کیتا جا رہا ہے۔ بھیڑ ظالماں دی سی، ایک معصوم بچیاں نو، 2 معصوم بچیاں نو دیواراں چنیا جا رہا ہے۔ یہ تھوڑے ہوندے نے، کلا ہوندا ہے، تے کلا بھی ہر شہر دے چ نہیں ہوندا۔ میں ایک دفعہ پھر دوران لگا، ہر شہر دے چوٹی دے دھنوان ہون گے اور انہاں نوں مان بھی ملے گا دھن کر کے، ہر شہر دے چوٹی دے کاروباری ہون گے، ہر شہر دے چ دارشنک فلاسفر کلاکار بھی ہون گے، ہر شہر دے چ راجنیتک ہوندے نے، سائنٹسٹ ہوندے نے، ہر شہر دے چ لور قانون نوں سمجھن واسطے سمجھن والے وکیل بھی ہون گے اور ہوندے نے۔ ہر شہر دے چ برہم گیانی نہیں ہوندا، ہر شہر دے سنت نہیں ہوندا، ہر شہر دے کوئی رب نال جڑی ہوئی آتما نہیں ہوندی۔ اگر ہوندی تے سانو ارداس چ شبد ایڈ کرن دی لوڑ نہیں سی، ہے گرو دیو رحمت کر، سہی سنت گرمکھ پیارے میل، جنہ ملیا تیرا نام چیتے، تیری یاد بنے۔ بہت اوکھا ہے مضمون گرو نو سمجھنا سمجھانا، پربھو نو سمجھنا سمجھانا، بہت باریک مضمون ہے، اتی سوکشم مضمون ہے، اتی سوکشم۔ اس واسطے چوٹی دا سائنٹسٹ بھی نہیں پہنچ سکیا اتھے جتھے ایک بھگت پہنچ جاندا ہے۔ پنڈت سور چھتر پت راجا، بھگت برابر اور نہ کوئے، کوئی سور بیر، کوئی چھتر پتی راجا، کوئی چوٹی دا گیانی، کوئی چوٹی دا دارشنک تے سائنٹسٹ اتھے نہیں پہنچ سکدا جتھے بھگت پہنچ جاندا ہے، جتھے برہم گیانی جو ہے پہنچ جاندا ہے۔ تو میں پھر عرض کراں، در گھر کی سوجی نہ ہے، گھر ہے پرماتما، در ہے گرو، اور در گھر نالوں الگ نہیں ہوندا، اسے نو در کہندے جو گھر دے نال لگے ہوئے۔ تے گھر دے جانا ہے، در دے چو لنگنا پے گا، در دے چ لنگ کے گھر دے چ پرویش ملے گا۔ 2 شبد میں کہاں خلاصہ، پھر جو پرکاش دے روپ دے چ پرماتما ہے، وہی شبد دے روپ دے چ گرو ہے، اور جو شبد دے روپ دے چ گرو ہے وہی پرکاش دے روپ دے چ پرماتما ہے۔ اور جو پرکاش دے روپ دے چ گھر ہے، وہی شبد دے روپ دے چ در ہے، और जो शब्द दे रूप दे दर है वो ही प्रकाश दे रूप दे घर है। जो परमात्मा दे रूप दे घर है वो ही गुरु दे रूप दे दर है, और जो गुरु दे रूप दे दर है वो ही परमात्मा दे रूप दे घर है। नानक सो दे सिमरत वेद पार ब्रह्म गुरु नाही भेद। पार ब्रह्म ते गुरु दे भेद नहीं है, ते जे भेद ही नहीं है तो फिर दो नाम क्यों ने, ए गुरु ए प्रभु, ए परमात्मा ए गुरु है। अगर भेद नहीं दोवें एक ने तो फिर दोहां दा नाम एक होना चाहिए। दो नाम ने दोहां दिया क्रियावां वख वख ने, तो फिर दो हस्तियां होनियां, दो हस्तियां नहीं है। नानक सो दे सिमरत वेद पार ब्रह्म गुरु नाही भेद। पार ब्रह्म ते गुरु दे कोई भेद नहीं। दर घर नू लगे होया, घर दर दे नाल जुड़े होया, प्रभु गुरु दे नाल जुड़े होया, गुरु प्रभु दे नाल जुड़े होया। इंज दर घर दे नाल जुड़े होया, घर दर दे नाल जुड़े है। सो दर के हा, सो घर के हा। इस दर तक साड़ा तन जाएगा कतई नहीं, कतई नहीं, तन जा ही नहीं सकता। निराकार दे देश ए आकार तन नहीं जा सकता। निरंकार दा देश जेदा कोई आकार नहीं, चक्र नहीं, चिन्ह नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं, ए तन नहीं जा सकता। तन ते इत्थे रह जाएगा। निरंकार दे देश साडा मन जा सकता है, साडा मन जा सकता है। कारण ए मन आया भी सीधा सीधे रूप दे निरंकार तो आया। इस वास्ते गुरबाणी कहती है तन ते मिट्टी, ए मिट्टी इत्थे रह जाएगी। मन जोत है, ए जोत दे जोत हो सकता है। मन तो जोत स्वरूप है अपना मूल पछा। मन सूक्ष्म शरीर है, इनरल बॉडी है। शरीर दे अंदर एक सूक्ष्म शरीर। कई पुरुष इस ढंग नाल भी जींदे ने और इतनी उच्ची जिंदगी बतीत करते ने। वक्ती तौर ते सूक्ष्म शरीर दा संबंध अस्थूल शरीर नाल तोड़ भी देंदे ने, कुछ दिनां लई, कुछ घंटियां लई, कुछ समय लई। सनातन जग दे महान जगत गुरु शंकराचार्य एक महीने अपने शरीर चो निकल गए। इन्होंने अपना सूक्ष्म शरीर जिन्हों जोत कहिंदे ने, मन कहिंदे ने, कढ़ दिता। चेलियां नू कहा इस शरीर की रक्षा करने, मैं एक महीने बाद आवांगा। पिछोकड़ सारी गाथा ना सुनावा, ये राम राय भी कर लेंदे सन, धन गुरु हर राय साहब जी दे साहिबजादे। अपनी पत्नी नू कहा मैं 7 दिन बाद आवांगा, मैं होर मंडलां दे जाना, मेरी देही दा ख्याल रखें, मेरे शरीर दा ख्याल रखें। राम राय मसंदा नू मौका मिल गया, राम राय दी देही नू अगला देईए ते आपां खुद गुरु बने। ए विचकार रोड़ है, इनू हटाओ। अर्थी सजा ली, अर्थी कढ़न लगे, राम राय दी पत्नी जारो जार रोंदी है, दुष्टो एक हफ्ता तो उड़ीक करो, अज ते 3 दिन हुए ने। मैनू कह गए ने 7 दिनों बाद मैं आवांगा, उड़ीक करो। नहीं, ये मर गए ने, ये मर गए। बड़े उसने तरले पाए, बड़े उसने रुदन कीता, मसंदा दी ताकत लै गए शमशान घाट, अग ला दिती, अद्धा शरीर जल गया। राम राय दा सूक्ष्म शरीर आया, ਪਰ ਪਿੰਜਰਾ ਜਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਘਰ ਜਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨੇ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਗ ਉਸ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡੋਬਦਾ। ਉਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ, ਦੁਸ਼ਟੋ ਮਸੰਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਤਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਤਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਤਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ? ਪ੍ਰਥਮ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਇਸ ਅਸਥੂਲ ਦੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦੂਰੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾ। ਪ੍ਰਥਮ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਇਹ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨਾ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਢੇਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਿਤੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਵਕਤ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ। ਜੋ ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ? ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਾਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੁਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਅਲਾਪੀਏ, ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਧਾਰਨ, ਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਅਸਾਧਾਰਨ। ਅਸਾਧਾਰਨ ਕੌਣ? ਬੜਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਕਸ਼ ਗਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਦਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਮਝ ਸੀ, ਘਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਮਝ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਵਾਟ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਪੈਂਡਾ ਬਿਖੜਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਂਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਵਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਅਗਮ ਹੈ ਜਿਉਂ ਜਲ ਅੰਦਰ ਮੀਨ ਫਿਰੰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਅਲਕ ਹੈ ਜਿਉਂ ਆਕਾਸ਼ੇ ਪੰਖ ਉਡੰਦਾ, ਮੱਛੀ ਜੈਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਜਦ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਉੱਡਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਅਭਿਆਸੀ ਜੈਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਜਪਣ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ, ਜਪਦੇ ਹੀ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਅਗਮ ਹੈ ਜਿਉਂ ਜਲ ਅੰਦਰ ਮੀਨ ਫਿਰੰਦਾ, ਮੱਛੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਜਪ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਜਪਣਾ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਹਲੇ, ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਰਸਤਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ के जीवन रस्ते च ही रह जाए या घर पहुंचे। जिड़े चलते पे पर रस्ते च ही रह गए, घर तक ना पहुंचे, इन्हां नूं असाधारण कहिंदे ने। ये साधारण लोग नहीं ने, असाधारण ने। ये सूक्ष्म देह ही बहुत जल्द जन्म नहीं लेंदी। ये सूक्ष्म शरीर बहुत छेती गर्भ दे च प्रवेश नहीं करदा। क्यों? जितनी वाट इसने तय की थी ये चल चल के, इतने ही संस्कारां वाली कोई मां होवे तां गर्भ दे च प्रवेश करनगे, वरना नहीं। इस तरह दी कोई मां होवे जिहड़े उन्हां कोल संस्कार ने चल चल के, जो उन्हां नूं अनुभव मिले है। दूसरे असाधारण कौन? जैसे 2.5 करोड़ बंदियां दा कातल है हिटलर, औरंगजेब अपने 3 भरावां नूं मार के, भतीजियां नूं मार के, अपने प्यो नूं जेल दे च पा के सिंघासन ते बैठा है। ये कम कोई ओ कर सकदा है जिहदे कोल दिल नहीं पत्थर होवे, दिमाग ना जड़ होवे, मनुख ना वैशी होवे, दरिंदा होवे, ओ कर सकदा है। भतीजियां नूं भी मार दो, भरावां नूं भी मार दो, बुढ़े प्यो नूं भी जेल दे तड़पा के मारो। वड्डी भैण जहां आरा आई, उन्हों जद पता चलिया कि दारे नूं भी मार दिता है। सुनिया सी उसने पहले शुजा नूं मार दिता है, मुराद नूं मार दिता है, पर जद हुण पता चलिया दारे नूं भी मार दिता है। दारा बड़ा नेक तबीयत इंसान सी, दानी मिजाज सी, और ज्ञानी सी, शायर सी, कवि सी, विद्वान सी, सूफी फकीरां दी ज्यादा संगत विच रहिंदा सी, फकीर तबीयत इंसान सी। जहां आ रहा है वड्डी भैण इस बिरह नाल बड़ा प्यार करदी सी और बड़ियां दुआवां देंदी सी, तो खुदा दे मार्ग ते चले हैं, खुदा तेनू अपने घर तक पहुंचावे, तेनू पूरे बोध हासिल होवे। पर जद पता चलिया, बड़ी बेदर्दी नाल औरंगजेब ने दारे नूं भी कतल कर दिता। रोंदी हुई आई औरंगजेब कोल, पहले ते बड़ी ताड़ना की थी, मूर्खा तू ये की कीता, मासूम बेरा, खुदा तरस बेरा, खुदा शनास जो सी। और बड़ा फैज दिल बंदा, फयाज दिल बंदा, बड़ा दानी मिजाज दा, तू उन्हों भी मार दिता है। कहिंदन अंदर इतना जोश आया, जहां आरा ने हथ चुक लिया औरंगजेब नो मारन वास्ते, ए तू की कीता। औरंगजेब ने उसे वक्त उदी गुत पकड़ी, घसीट के लै गया जिस कमरे दे च प्यो बंद सी, नाल दे कमरे च उन्हों बंद कीता। 7 साल बिचारी जेल दे च रही है। ये कम कोई ओ कर सकदा है जिहदे कोल दिल नहीं पत्थर होवे, जिहदे कोल दिमाग नहीं सिर्फ जड़ भूसा होवे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे मनुखां दा जल्दी जन्म नहीं आउंदा, हिटलर जैसियां दा जल्दी जन्म नहीं आउंदा, हर नाकर जैसियां दा जल्दी जन्म नहीं आउंदा। कितना मूड, कितना चेत, पशुआं नूं मात कर गया। 7 साल दे प्रहलाद नूं, मासूम बच्चा है, हरनाकश कहिंदा है तू जपया कर, जल हरनाकश, थल हरनाकश, ताकि तेनू वेख के होर बच्चे भी जपन, कि असी निरंकार करके दुनिया विच जाने जाइए। निरंकार होण दी तौफीक मनुख नूं निरंकार ने दित्ती है। ध्यान नाल सुनना, निरंकार होण दी उमंग ते तड़प भी मनुख नूं दित्ती है। मनुख ऐसा जीवन चाहुंदा है जिहदे च मौत ना होवे, ऐसा जीवन केवल परमात्मा कोल है जिहदे कोल मौत नहीं। मनुख ऐसा रस चाहुंदा है जो कदी बेरस ना होवे, तो ऐसा महारस ते परमात्मा ही है। मनुख ऐसा सुख चाहुंदा है जो कदी दुख दे च ना बदले, ऐसा सुख ते केवल परमात्मा। मनुख ऐसी शक्ति चाहता है जो कभी कमजोरी दे ना बदले, उस महाशक्ति का ना ही तो परमात्मा और की है। मनुख परमात्मा होना चाहता है, होना चाहता है। परमात्मा होने की सौगात परमात्मा ने हर मनुख नूं दित्ती है, हर एक नूं दित्ती है। किस तरह परमात्मा वेखदा है, सब कुछ वेखदा है, मनुख भी वेखदा है। एक गल वखरी है, सब कुछ नूं वेखण दी तौफीक नहीं पर वेखदा है। परमात्मा सुणदा है, पेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जाणिया दूरी है। सदा वेखदा पै, सब नूं वेखदा पै, सब नूं सुणदा पै, सदा सुणदा पै। ठाकर हमरा सद बोलंता, सदा बोलदा पै और उहदा बोल सारी दुनिया विच गूंज रिहा है। अनाहद ना मनुख भी सुणदा है, वेखदा है, मनुख भी समझदा है, पर सीमित है। मनुख भी जानदा है पर सीमित है। ये असीम होना चाहता है, असीम तो केवल परमात्मा ही है। मनुख परमात्मा होना चाहता है, परमात्मा होने की इसके अंदर भुख है, और इंज कह लो शायद परमात्मा नहीं पाई है। और ऐसा हो सके, परमात्मा हो सके, ऐसी तौफीक भी परमात्मा ने दिती है। शायद इसे वासे जफर कहता है, बनाया ऐ जफर खालिक ने कब, इंसान से बढ़कर मलिक को, देव को, जिन को, परी को, ऊरे गिलमा को। मनुख तो वध परमात्मा ने किसे नो नहीं बनाया, क्योंकि मनुख का ही भविष्य है परमात्मा होना। पशुआ का भविष्य अजय मनुख होना है, बनस्पति का भविष्य अजय पशु होना है, पत्थरों का भविष्य तो अजय बनस्पति होना है। केवल मनुख का भविष्य है परमात्मा होना। फरवरी का महीना पिछलिया, इस साल दे जो लंघे, मैं कानपुर दे सी, सज्जन मित्र नाल सन। अमृत वेले मैं नितनेम पिया करा ते फोन आई दिल्ली तो। मैं खैर होवे सही, ऐ अमृत वेले 4:30 बजे कि कौन फोन करता है। दिल्ली तो एक नौजवान पुछना चाहता है मैनू, कोई मस्कीन जी सुने है, तुसी भविष्य वक्ता हो, भविष्य जानते हो? मैं कहा हाँ जानना, भविष्य वक्ता, भविष्य जानना। कहन लग्या कि फिर हुण तुसी आ रहे हो ना दिल्ली, की बाई संत बाबा अतर सिंह जी की बरसी ते मैं पहुंचना सी, तुसी आ रहे हो, असी पोस्टर पढ़े ने, असी थोड़े कोल आवांगे अपना भविष्य जानने वास्ते। मैं कहा उदो तो गल बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत दिन पए ने, मैं थानू हुणे ही भविष्य दस देना, तुसी हुणे ही पुछ लो। कहिंदे हुणे ही दस दोगे, फोन ते दस दोगे? मैं कहा हुणे ही दस दें। तो मेरा भविष्य की है? मैं कहा केवल तेरा ही नहीं, तेरे सारे परिवार का, सारे संसार दे मनुखां दा इक्को ही भविष्य है परमात्मा होना, और कोई भविष्य नहीं। चंगा परिवार मिल गया तृप्ति नहीं मिलेगी, चंगा कारोबार मिल गया है परेशानियां नहीं जानगी, बड़ी धन संपदा मिल गई, रहन नूं उच्चा महल मकान मिल गया है बेचैनी नहीं जाएगी, बड़ा बैंक बैलेंस हो गया है, नोटां दे अंबार लग गए ने, व्याकुलता नहीं जाएगी, दुख नहीं जाएगा, दुख नहीं जाएगा, बेचैनी नहीं जाएगी, परेशानी नहीं जाएगी, चिंता नहीं जाएगी। ये सब कुछ उदो मिटन गए जिस दिन परमात्मा मिलेगा, उस तो पहले नहीं। दुख भी बनिया रहेगा, संताप भी बनिया रहेगा, की होया तू चोटी का धनवान हो, दुख भी बनिया रहेगा, चिंता भी बनी रहेगी, की होया तू दार्शनिक ते फिलोसफर हो, दुख भी बनिया रहेगा, कलेश भी बनिया रहेगा, की होया तू बहुत वड्डा शक्तिशाली राजनैतिक हो जाए, धनवान हो जाए, की होया तेरा महल उच्चा हो गया, मकान बहुत वड्डा हो गया, दिल दी व्याकुलता नहीं जाएगी। ये सब कुछ उस दिन मिटेगा जिस दिन तू परमात्मा हो जाएगा। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होए। भगत कबीर ऐलानिया कहंदे ने, बिगड़ियो कबीरा राम धोआई, साच भयो अन कते न जाए। कहंदा संतां दी संगत विच आपां ऐसे तब्दील होए की हो गए, सच हो गए। हुण सच ते परमात्मा, तो कबीर कहंदे ने होवेगा परमात्मा सच, आपां भी सच हो गए। ध्यान नाल सुनना, बिगड़ियो कबीरा राम दोहाई, साच भयो अन कते न जाई। मैं सच हो गया, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई ना सके पछानी। मैं कह सारे मनुखा का एक कोई भविष्य है, राम हो जाना, भगवान हो जाना, परमात्मा हो जाना। ते परमात्मा होने दे वसीले परमात्मा ने बख्शे हुए ने, सारियां नू दिते हुए ने, सीमित ने, ये असीम हो सकते ने। उनू याद कर करके किवें उसनू याद करिए, पहले दर तक पहुंचिए, फिर दर ने ही घर दे प्रवेश करा देना। इतनी सेवा इस वक्त कबूल करनी, प्रवान करनी सारियां दा और मुखी सजना दा, बार बार धन्यवाद।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio te chal raha hai live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott Road, Surrey.

समस्ति निदाने नमस्तु नरनाथे नमस्तु ब्रह्माते नमस्तु गंजे नमस्तु अपंजे नमस्तु अकाले नमस्तु अपाले नम सर्वदेशे नम सर्वपेशे

काई हथ सुरी जगत का साई नील वस्त्र पैरो वे परवान मलेश तान ले पूजे प्राण पाक्या का कुठा बकरा खाना चौक पर किसे ना जाना देखे चौका कड़ी कार उपराय बैठे कूड़े यार मत पिटे वे मत पिटे एवाना साडा पिटे तन फिटे फेड़ करेन मजूठे

संगत सेवा प्राप्त होई। कोटान कोट शुकर तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिया दा। आप संगत ने बड़े प्रेम नाल अज दे जो मीरी पीरी दिवस नूं समर्पित सजे दीवाना विच अमृत वेले दी हाजरी पर जा सकी वार दे कीर्तन दा आनंद माणिया।

अर्जन काया पलटक मूरत हर गोबिंद सवारी चली पीड़ी सोडिया रूप दखावन वारो बारी दल भंजन गुर सूरमा बड़ जोदा बहु पर उपकारी पुछन सिख अरदास कर छे महला तक दर्शन हारी अगम अगोचर सत गुरु बोले

और खास करके योगियां दे प्रचार दे च ए खास गल आई कि ए मादा ए माया जुगती नाल प्रसूत होई व्याई और उस तो तीन प्रमाणिक चेलिया ने जन्म लिया जिद च एक संसारी है एक भंडारी है और एक लय करण वाला है एक परलय करण वाला है। पर हकीकत की है साहिब कहने ज्यों तिस भावे तिवे चलावे ज्यों होवे फुरमान। हकीकत यह है कि परमात्मा जिवे चाहुंदा है तिवे अपनी प्रकृति नू चला रहा है जिवे उसका हुक्म है तिवे ही जगत दे सब कुछ जो है हो रहा है उस तो बिना होर कुछ नहीं उस तो ही उत्पत्ति हो रही है उस तो ही पालना हो रही है उस तो ही नाश हो रहा है क्योंकि उसका कोई मुद्दा नहीं उसलिए सब कुछ तमाशा है उसलिए सब कुछ एक खेल है। एक मिथ है बड़ी सुंदर कि एक दफा शिवजी ने प्रार्थना की हे अकाल पुरख कि तू मैनू जिहड़ी सेवा बख्शी है मौत दी मैं जिस घर विच जाना रोना पिटना शुरू हो जाता है यह मैनू चंगा नहीं लगता ते मेरी सेवा बदल दिती जाए जेड़ा काम इंद्र नू सौंपया गया है बरखा करन दा एक काम मैनू दिता जाए। तां परमात्मा ने आखिया शंकर बरखा करनी तेरे सुभा दे अनुकूल नहीं मौत करनी तेरे सुभा दे अनुकूल है ते असी काम दिता है तेनू तेरे सुभाव दे अनुकूल। पर शिवजी ने हट कीती नहीं जे बरखा इंद्र कर सकदा है तो मैं क्यों नहीं कर सकदा मेरी झोली च ए सेवा पाई जाए। बहुते तरले करके हट करके परमात्मा ने ए सेवा झोली च पा दित्ती। अच्छा हुण आईंदा तो बरखा तू करेगा। शिवजी ने ए वर प्राप्त कीता जद मैं डमरू वजावा उदों ही बरखा होवे उस तो पहले नहीं होनी चाहिए तथा उस तू कर दिता गया ठीक है तू डमरू वजाएगा बरखा होवेगी। मात लोग दे आए शिवजी मिथिहास किसान लोग हल चला रहे सन ता शिवजी कहन लगे सुनो हल ना चलाओ क्यों 13 साल तक मीह नहीं पैना बरखा मेरे हथ च है लेके वर आया है बरखा दा कर रहा है मौत अपने सुभाव दे मुताबिक। 15 दिन बाद जद फिर उत्थों लंघिया ते किसान बीज पै पावन ते शिवजी गुस्से च आके कहन लगे जद मैं कह दिता है 13 साल तक मीह नहीं पैना ते बीज क्यों रोल रहे हो जमीन दे च क्यों नाश कर रहे हो क्यों अपना नुकसान कर रहे हो। तो किसान कहन लगे जे रब चाहेगा ते बिना मीह ते भी बीज उगाणगे ते जे हुण ना भी उगे ते 13 साल बाद मीह पैना है ते 13 साल तक असी बीज बोया ना हल चलाया ना तो असी ते हल चलाना भुल जावांगे साडी संतान भुल जावेगी असी खेती बाड़ी का काम ही भुल जावांगे। थोड़े जिहा शिवजी अगे चले गए रुख दे थले बैठे ते ख्याल आया जे किधरे मैं 13 साल डमरू वजाया ना ते मैं वजाना भुल जावांगा। तो एकदम झोली देचो डमरू कढ़िया और उनू वजाण लग पे ते वजांदे आई मीह पै गया। गुस्से च आए भी मेरी चाहत तो बिना किस तरह होया अलहाम होया आकाशवाणी हुई तू ही वर लिया सी जद मैं डमरू वजावा उदो बरखा होवे तो हो गई है बरखा। शिवजी दे हाथ जुड़ गए कहन लगे नहीं इते दो कुछ तू चाहना है ओही कुछ आउंदा है जो कुछ असी चाहते हैं ओ कुछ नहीं आउंदा। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान पै करदे ने ज्यों तिस भावे तिवे चलावे ज्यो होवे फरमान। जिवे उस नू भावदा है ते जिवे उसका हुक्म है तिवे ही ओ जगत नू चला रहा है ते तिवे ही उसे तरीके नाल ही जगत दे सब कुछ हो रहा है। ओ वेखे ओना नदर ना आवे बहुता ए वडान। बहुती आश्चर्य लीला ए है कि परमात्मा सारिया नू वेखदा है सारे जीवां नू वेखदा है पर सारे जीवां नू परमात्मा नहीं दिखाई देंदा। ओ वेख रहा है लेकिन जीवां नू ओ नहीं दिखाई दे रहा। महाराज कहिंदे मेरी दृष्टि सब तो वड्डा विडान हैरान कुण खेल जेड़ा है ओ यही है को हर एक दे उत्ते निगाह रखी बैठा है लेकिन किसे जीव दी निगाह दे सामने परमात्मा नहीं अकाल पुरख नहीं। आदेश तिसे आदेश आदेश है सजदा है उसनू किसनू जो जगत दा मुड है ते जिसदा कोई मुड नहीं
اور جو دھبیاں تو رہت ہے ناس تو رہت ہے تے جس دا ویس سمچے جگاں جگاں انتراں دے چھے ایک کوئی ہے آدیس تے سے آدیس آد انیل اناد اناہت جگ جگ ایکو ویس

जागत सोया जन्म गवाया। ये जागदा दिखाई दे रहा है जबकि टोटली सुता पे है, कोई परमात्मा का पता नहीं, कोई परम रस का पता नहीं, कोई समाधि का ज्ञान नहीं, कोई प्रेम का पता नहीं, कोई उस महान चानण का पता नहीं। जागत दिखाई दे रहा है जागदा सोया, इति सूक्ष्म शरीर के तल ते सोया होया है, सुता होया। जागत सोया जन्म गवाया। वाहिगुरु वाहिगुरु दे जप नाल जद कोई सूक्ष्म शरीर नो अद तो वद जगा लैंदा है, ऐसे मनुख नू कोई गैबी शक्तियां मिल जांदियां ने जिन्हों रिदियां सिदियां भी कह देंदे ने। ऐसा मनुख उस सूक्ष्म शरीर नू अपने शरीर दे चों कढ भी सकदा है, किधरे लै जा भी सकदा है, फिर वापस ले आ सकदा है। तुसी आखोगे मैं की आखदा पिया, साडे गुरमत दे च भी ऐसा हुंदा रहा, बाबा राम राय करदे रहे। हर दूजे तीजे महीने वो ऐसा कर लेंदे सन, फिर वापस आ जांदे सन। एक दफा अपनी पत्नी नूं कहा मैं एक हफ्ते बाद आना है, मेरे इस देही दा ख्याल रखें, मेरे शरीर दा ख्याल रखें, क्योंकि कुछ मसंद मेरे दुश्मन ने ते मैनू मुर्दा जान के किधरे होर अनर्थ ना कर बैठन। पत्नी ने कहा मैं दसांगी नहीं किसे नू, लेकिन मसंदा नू पता चल गया। तीसरे दिन उते अर्थी सजा के ले आए, बई राम राय गुजर गए ने, खत्म हो गए, अपना ले जाना है, चिता जलानी है। हुण ये मसंद बहुते सन भ्रष्ट हो गए सन, इन्हां दी गलत वरतों राम राय करदे रहे तो मसंद अज राम राय दी गलत वरतों करन लग पए। इस तरह ही होंदा है, चिता ते लिटा दिता है शरीर, मरिया होया शरीर ते आकड़ जांदा है, पर तीन दिन का नहीं आकड़िया होया सी, मुर्दा नहीं सी, पर लिटा दिता है, कफन पा के ले चले। रुदन करती रह गई बाबा राम राय दी पत्नी, शोर शराबा पांदी रह गई। तुसी जिंदा मनुख रह जा रहे हो शमशान घाट विच, पर नहीं मन्ने मसन, चिता ते रख दिता है, अग भी ला दिती है, अद्धा शरीर जल गया। गुरु प्रताप सूरज दी कथा जो सारे इतिहासक स्थानां दे छौंदी है, अद्धा शरीर जब जल गया तो बाबा राम राय वापस आए, सूक्ष्म शरीर आया। पर हुण देही अद्धी तो ज्यादा जल चुकी सी, सूक्ष्म शरीर लई प्रवेश करन दा साधन खत्म हो चुकया सी। फिर भी प्रवेश करके इस अधे जले शरीर दे चों भी आवाज बुलंद होई, ऐ मसंदो तुसी मैनू जिंदा साड़िया है, गुरु थानू जिंदा जलाएगा। इन्हां नू डेरादून दे च धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने महान जालम ते दुष्ट जान के जिंदा जला दिता। इतिहास है। राम राय अक्सर ऐसा कर लेंदे सन, शायद अपने शंकराचार्य दा नां सुनिया होवे ओ भी कर लेंदा सी, इस तरह वह भी कर लेंदा सी। मंडन मिश्र जो मांडला दे च रहिंदे सन, उन्हां दे नां करके शहर दा नाम मांडला है, मध्य भारत दा एक वड्डा शहर है मांडला। इत्थे मंडन मिश्र रहिंदे सन, बड़े उच्च कोटि दे विद्वान। ते शंकराचार्य दा जमाना सी, ते उन्हां दिनां विच विचार वटांदरे दा एक ढंग आउंदा सी, जगह जगह विचार वटांदरा करना, जिहड़ा विचार विच हार जाए उहदे कोल सारे ग्रंथ लै लैणे, इधर दे हुण इह ग्रंथ पढ़न दा तेरा हक नहीं है। मंडन विशर कि शंकराचार्य कोल हार गए, जबकि शंकराचार्य नूं जगत गुरु भी कहिंदे सन, जगत गुरु

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: साबत लाल मसर लवो 399 दा बैग वड्डा जंबो साइज गोभी दा फुल 298 दा एक अते बिना बीज वाला हदवाना 68 सेंट्स नू पाउंड
2: जिंदगी दे हिसाब किताब वांग बिजनेस दा हिसाब किताब भी बहुत औखा है। पहला मेनू भी यही लगदा सी, पर जदों मेनू बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां बारे पता लगा, ओदो तो मैं टेंशन फ्री हो गया। जिन्हां नूं है 30 साल तो भी वध दा तजुर्बा। टैक्स पेपर फिल करने होन, बुककीपिंग होवे या किसी भी तरह दा फॉर्म भरवाना होवे, तां अज ही संपर्क करो बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां नूं। कॉल 604-325-8370 604-325-8370
3: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudel Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudel Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudelbaudgroup.com.